कृता निर्भौ निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक खुशी सच सोचे सोच न हो गई

अशंत मूर्ख अंध घोर अशंत चोर राम अशंत अमर कर जाए अशंत काल वाय संत पापी पाप अशंत कूड़े आर करे फिर संत मलेच माल पाखाए अशंत निंद

अंतरगति जग मरना सब गुरु तेरे बनाई होए बिन गुरु कीते मन होए स्वस्थ आस पाणी ब्रह्मा सत सुहाग ब्रह्मा।

कृता निर्भो निर्वय अकाल मूर्त अजूनी सैदम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी सच।

गुरमत ना मेरा प्राण सुखाई, हर कीरत हमरी रहरा सुरहाओ। हर जन केवट भाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास, हर हर नाम मिले तृप्ता सह, मिल संगत गुण परगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम परगास। राग गुजरी महला पंजवां, काहे रे मन चित वह उदम। जा आहर हर जीव फरिया, शैल पत्थर मह जंतु पाए। ताका रिजक आगे कर धरिया, मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया। गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाओ। जनन पिता लोक सुत बनता, कोई न किसकी तरिया। सिर सिर रिजक संबाहे ठाकुर, काहे मन भाओ करिया। ऊडे ऊडावे सह कुसा, तिस पाछे बचरे छरिया। तिन कवन खलावे कवन चुगावे, मन मह सिमरन करिया। सब निदान दस अष्ट सिदान, ठाकुर कर तल तरिया। जन नानक बल बल सत।

सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगमा अगमा पारा, सब त्याव है सब त्याव है तुझ जी, हर सच्चे सिरजन हारा। सब जी तुम्हारी जी, तू जिया का दा तारा, हर त्याव हो संतोह जी, सब दुख विसारन हारा। हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा, तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी, हर एको पुरख समाणा, एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज विडाना। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हाँ तुद बिन अवर न जाना, तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाना। जो सेव है जो सेव है तुद जी, जन नानक तिन कुरबाना, हर त्याव है हर त्याव है तुद जी, से जन जुग में सुखवासी, से मुक्त भये जिन हर त्याया जी, तिन टूटी जम की फांसी, जिन निरपाओ जिन हर निरपाओ त्याया जी, तिन का पाओ सब गवासी, जिन सेवया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी, से धन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी, तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंता, तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनिक अनेक अनंता, तेरी अनिक करहै हर पूजा जी, तप तपह जपह बेअंता, तेरे अनेक पढ़ै बहु सिमृत शास्त्र जी, कर क्रिया खट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता, तू आद पुरखे अपरंपर करता जी, तुद जेवड़ अवर न कोई, तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू निहचल करता सोई, तुद आपे भावै सोई वरतै जी, तू आपे करह सुहोई, तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सबसे का जानोई, आसा महला चौथा।

हर गुण सद ही आख वखाणे, जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर न कोय। तू कर कर वेखै है जाणै सोय, जन नानक गुरमुख प्रगट होय। आसा महला पहला। तित सरवरड़ै पै

हम देखा तह डूबी अले मन एक न चेत समूढ़ मना हर विसरत तेरे गुण गलिया रहाओ ना हो जति

मिल साध संगत भज केवल नाम, सरंजाम लाग भवजल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कह रहा। जप तप

एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह पातशाही दसवें कब्यो बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम काव हो आप हाथ दे मुहे बचाव हो सुखी बसै मोरो परवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिए सब बैरन को आज संगरिए पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं जो वर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे उबरी है मरण काल का त्रास निवरी है तू जो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुझू करे हो रक्षा राख ले हो मुहि राखन हारे साहिब संत सहाये प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर दशकंता काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तुमासा जवन काल जोगी शिव कियो भेदराज ब्रह्मा जूथियो जवन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जक्षन उपजायो

भिन्न भिन्न तुहे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एकै रूप अनूप स्वरूपा रंक भयउ राव कहि पूपा अंडज जेरज शेतज कीनी पुत भुज खान बाहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हवै बैठा कहूं सिमट पयो शंकर कैठा सिगरी सृष्टि दिखाए अचम भव आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिखो वार सिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तुझ तव सरणी परे तिनके दुष्ट दुख तहवै मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो

दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काल लाओ। कृपा दृष्ट तन जाहि निहरिहु, ताकि ताप तनक मह हरिहु। रिद्ध सिद्ध करमु सब हुई, दुष्ट छाह छव सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल वास्ते ताहे कुबारा।

मेरा आधारु। वाजे पंच शब्द तिद घर सुभागै, घर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन कौ, से नाम हर कह लागी। कह नानक तह सुख हुआ, तित घर अनहद वाजे, अनद सुन हुआ।

नित नित रख उर तहारु, तम संसार चरण लग चरिये, सब नानक ब्रह्म पसारु। श्लोक महला पंजवा। तेरा कीता जातू नाही, मैनू जोग की तोई, मैं निर्गुण आरे को गुण नाही, आपे तरस पे ओ, तरस पया मेह

श्लोक महला पंजवा। अंतर गुर आराधना जिहवा जप गुर नाओ, नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुनना गुर नाओ। सतगुर से तीरथ

जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

0: कर गुरु कल की तार जगदीश बुरे सुमिहार सत श्री अकाल।
1: वाहेगुरु जी का खालसा
0: वाहेगुरु।

0: सुखमनी सुखमृत प्रवना
1: भगत जना के मन विश्राम रहो
0: रब के सिमरन गर्भ न बसे
1: रब के सिमरन दुख जम न से
0: रब के सिमरन काल पर हरे
1: रब के सिमरन दुश्मन टरे
0: रब सिमरत कछ बिघन न लागे
1: रब के सिमरन हम दिन जागे
0: रब के सिमरन भव न व्यापे
1: रब के सिमरन दुख न संतापे
0: रब का सिमरन साध के संग रब कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध
1: रब कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध
0: रब कै सिमरन जप तप पूजा
1: रब
0: कै सिमरन तीर्थ इसनानी
1: रब कै सिमरन दरगाह मानी
0: रब कै सिमरन हुए सुफला।

0: हर हर नाम तिन घट घट चीना
1: मन अपने ते बुरा मिटाना
0: देखे सगल सृष्ट साजना
1: सुख दुख जन सम दृष्टिता
0: नानक पाप पुन नहीं लेपा।

0: सर्व धर्म मह श्रेष्ठ धर्म
1: हर को नाम जप निर्मल कर्म
0: सगल क्रिया मह मूर्तम क्रिया
1: साध संग दुर्मत मल हिरिया
0: सगल उद्दम मह उद्दम भला
1: हर का नाम जपो जी सदा
0: सगल वाणी मह अमृत वाणी
1: हर को जसो रस

0: अगन महज ने उबारिया
1: पार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध
2: जो वन भोजन
1: मृद भया ऊपर साख सैन
0: मुख भया बैठ को दैन
1: एहो निर्गुण गुण कछु न बूझे
2: मोक्ष लियो तै नानक सीजे
1: एह प्रसाद तारू पर सुख बसे
2: सुत प्रात मीत।

0: झूठ संगम च
1: जो छड़ नासो अवस्थिर कर मन
0: जो होवन सो दूर पुराने
1: छोड़ जाए तिसका श्रम करे
0: संग सहाय तिस्वर हरे
1: चंदन लेपो तारे तोए
0: प्रीत संग संग होए
1: अंधकूप में पतित विकराल
0: दयाल
1: करदूत पशु की मांस जात
0: लोक बचारा करे दिन रात
1: बाहर पेखंतर मल माया
0: नहीं कछ करे छपाया
1: बाहर ज्ञान ध्यान स्नान
0: अंतर व्यापे लोभ सुहान
1: अंतर अगन बाहर तन स्वान

0: आनंद सेल माया रंग रसे
1: दृढ़ कर मन मने प्रतीत
0: नावे मुड़े चीत
1: पैर विरोध काम क्रोध मोह
0: विकार मालो तो
1: याहू जुगत बिहाने कई जन्म
0: नानक राख लियो अपन कर कर्म।

0: जेह प्रसाद शक्ति अमृत खाहे।
1: इस ठाकुर को रख मन मारे,
0: जेह प्रसाद सुगंधत तन लाव है।
1: इसको सिमरत परम गत पाव है,
0: जेह प्रसाद बस है सुख मंदर।
1: सहते आई सदा मन अंदर,
0: जेह प्रसाद ग्रह संग सुख वसना।
1: आठ पहर सिमरो तिस रसना,
0: जेह प्रसाद रंग रस भोग।
1: नानक सदा त्याय त्यावन जोग,
0: जेह प्रसाद पाठ पटंबर हलाव है।
1: सहत्याकत अवर लुभाव है,
0: प्रसाद सुख से सुविजय।
1: मन आठ पहरता का जस गा विजय,
0: प्रसाद तुझ सब को मन।
1: मुखता को जस रसन बखान,
0: प्रसाद तेरु रहता धर्म।
1: मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म,
0: प्रभ जी जब दर्ग है मान भाव है।
1: नानक पद से ती कर जाव है,
0: प्रसाद आरोग कंचन देही।
1: लिव लाव तुस राम सुनेही,
0: प्रसाद तेरा ओला रहत।
1: मन सुख पाव है हर हर जस कहत,
0: ये प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके।
1: मन सरनी पर ठाकुर प्रभ ताके,
0: ये प्रसाद जुझको न पहुँचे।
1: मन सास सास सिमरहु प्रभ उचे,
0: ये प्रसाद पाई दुर्लभ दे।
1: नानक ताकी भगत करे,
0: ये प्रसाद आपूखन बहरी जय।
1: मन ते सिमरत क्यों आलस की जय,
0: प्रसाद अस हस्त असबारी।
1: मन तिस प्रभ को कबहु न विसारी,
0: ये प्रसाद बाग मुलक रना।
1: राख प्रोय प्रभ अपने मना,
0: जिन तेरी मन बंत बनाई।
1: उठत बैठ सत्य सहते आई,
0: सहते आए जो एक अलख है।
1: इहां उहां नानक तेरी रख है,
0: ये प्रसाद कर है पुन बहुदान।
1: मन आठ पहर कर तिसका ध्यान,
0: ये प्रसाद तू आचार व्यवहारी।
1: इस प्रभ को साथ साथ चितारी,
0: ये प्रसाद तेरा सुंदर रूप।
1: सो प्रभ सिमरहु सदा अनूप।

0: मिटे अभिमान
1: साध के संग प्रगट सो ज्ञान
0: राध के संग बुझे प्रभ नीरा
1: संग सब होत नवेरा
0: साध के संग पाए नाम रतन
1: साध के संग एक ऊपर जतन
0: साध की महिमा बरने कौन पुरानी
1: नानक साध की शोभा प्रमाए समानी
0: साध के संग अगोचर मिले
1: साध के संग सदा पर खुले
0: साध के संग आवे बस पंचा
1: साध संग अमृत रस पंचा
0: साध संग हुए सब की रेन
1: साध के संग मनोर बैन
0: साध के संग न कतु तावे
1: साध संग अस्थित मन पावे
0: साध के संग माया ते पिन
1: साध संग नानक सो प्रसन्न
0: साध संग दुश्मन सब मीत।

0: साधक संग तिड़ सब धर्म
1: साधक संग केवल पार ब्रह्म
0: साधक संग पाए नाम निदान
1: नानक साधु के करवा
0: साधक संग सब कुल उदार
1: संग साजन में कटम सारे
0: साधु कै संग सो धन पावे
1: संत सबको।

0: रस ब्रह्म ज्ञानी की ना
1: ब्रह्म ज्ञानी की सब प्रमया
0: ब्रह्म ज्ञानी से कछ बुरा न पया
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा सुंदरसी
0: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी
1: ब्रह्म ज्ञानी बंधन से मुक्ता
0: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जूता
1: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ज्ञान।

0: ज्ञानी को खोजे महेश्वर
1: नान ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर
0: ज्ञानी की कीमत ना है
1: ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन भाए
0: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद
1: ब्रह्म ज्ञानी को सदा अदेश
0: ब्रह्म ज्ञानी का कत्या ना जाए दाकर
1: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर
0: ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने
1: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने
0: ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार
1: नान ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
0: ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता

0: साध बिखिया पर हरै
1: मन की वासना मन ते टरै
0: इंद्री जित पंच लोक ते रहत
1: नानक कोट मध्य को ऐसा परस
0: वैष्णो सो जिस ऊपर सो परसन्न।

0: जीवन मुक्त सो कहावे।
1: तैसा हरख तैसा उस सोग,
0: सदा आनंद तै नहीं बियोग।
1: तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी,
0: तैसा अमृत तैसी बिखाटी।
1: तैसा मान तैसा अभिमान,
0: तैसा रंक तैसा राजान।
1: जो वरताए साई जुगत,
0: नानक हो पुरख कही है जीवन मुक्त।
1: और ब्रह्म के सगले ठाओ,
0: जित जित कर रखे।

0: कई कोट वेद के श्रोते
1: कई कोट विसर होते
0: कई कोट आत्म ध्यानता रहे
1: कई कोट कवता विचारे
0: कई कोट नवत नाम त्याव है कई कोट भय अभिमानी
1: कई कोट अंधविज्ञानी
0: कई कोट कृपण कठोर
1: कई कोट अपेक्ष आत्म निकोर
0: कई कोट पर दर्व को फिर है
1: कई कोट पर दुख न करे
0: कई कोट माया श्रम माहे
1: कई कोट पर देश पर माहे
0: जित जित लाभ तित तित लगना
1: करते की जाने करता रचना
0: कई कोट सिद्ध जति जोगी
1: कई कोट राज रस को
0: कई कोट पंखी सर्प पाए
1: कई कोट पाथर बिरख मिल जाए
0: कई कोट पवन पानी बैसंतर
1: कई कोट देश को मंडल
0: कई कोट शशियर सूर नक्षत्र
1: कई कोट देवदान विंदर से शत्र
0: सगल समग्री अपने सूत तारे कई कोट राज स्थाम सातक
1: कई कोट वेद प्राण सिमरत
0: कई कोट की

0: कई कोट पाताल के वासी,
1: कई कोट नर स्वर्ग निवासी,
0: कई कोट जन्म है जी वह मरह,
1: कई कोट बोनी प्रह,
0: कई कोट बैठते ही खाहे,
1: कई कोट काले तक पाहे,
0: कई कोट मा कई कोट किए तनवंत,
1: कई कोट माया में चिंत,
0: यह जय पाना तह तह रखे,
1: नानक सब किस प्रभु के हाथे,
0: कई कोट भय बैरागी,
1: राम नाम संग चंद्र बिलागी,
0: कई कोट प्रभु को खोजनते,
1: आत्म में पार ब्रह्म लहंते,
0: कई कोट दर्शन प्रभु प्यास,
1: इनको मिले ओ प्रभु नाथ,
0: कई कोट मांगे सत्संग,
1: पार ब्रह्म दिन लागा रंग,
0: जिनको हुए अब सुप्रसन्न,
1: नानक ते जन सुदाता धन,
0: कई कोट

0: नानक यहां मुक्ता कै सुख पावे,
1: हनुमंता वै कर घर आवे,
0: तृण समान कर संग न जावे,
1: मोलस्कर मान को पर कर आस,
0: बल भीतर ताका हुए विनाश,
1: ते आप जाने बलवंत,
0: किन में हुए जाए।

0: सगले फिर थारे
1: अनक तपस्या करे अहंकार
0: नरक स्वर्ग फिर अवतार
1: अनक जतन करा तम नहीं द्रवे
0: हर दरगह को कैसे गवे
1: आपस को जो भला कहावे
0: किसे भलाई निकट न आवे
1: सर्व की रेंजा का मन होए
0: कहो नानक ताकि निर्मल सोए
1: जब लग जाने मुझते कछ होए
0: तब इसको सुख नाही कोए
1: जब है जाने मैं किस करता
0: तब लग गर्व जोन

0: कहो छूटै
1: सहस कटे लको उठतावे
0: तृप्त न आवे माया पाछे पावे
1: अनक भोग मिखिया के करे
0: मैं तृप्तावे कब कब मरे
1: बिना संतोख नहीं को राजे
0: अपन मनोरथ बिरथे सब काजे
1: नाम रंग सर्व सुख होए
0: बड़ भागी किसे प्राप्त होए
1: करम करा बनो आपे आप
0: सदा सदा नानक हर जाप।

0: सद ही रहा समाई
1: आप उपदेश समझे आप
0: आपी रचिया सब के साथ
1: आप किनो अपन विस्तार
0: सब कछु स्काव करने हार
1: उससे पिन कहो किछो
0: शांत अनंतर के सोए
1: अपने चलत आप करने हार
0: कौतुक करे रंग अपार
1: मन में आप मन अपने माहे
0: नानक कीमत कह न जाए
1: सत सत सत प्रभ स्वामी
0: गुर प्रसाद किने वख्यानी
1: सच सच सच सब कीना
0: कोट मदे किने

0: संत कै दुखन आर जा कटे,
1: संत के दुखन जमते नहीं छुटे,
0: संत कै दुखन सुख सब जाए,
1: संत के दुखन नरक मह पाए,
0: संत कै दुखन मत हुए मलीन,
1: संत के दुखन सोबते हीन,
0: संत के हते को रखे न कोई,
1: संत के दुखन थान प्रष्ट होए,
0: संत कृपाल कृपा जे करे,
1: नानक संत संग निंदक भीतर,
0: संत के दुखन ते मुख पवे,
1: संतन के दुखन काग ज्यों लवे,
0: संतन के दुखन सर्प

0: जिसका हुक्म भू सुख होए,
1: जिसका नाम रख कंठ पड़ोए,
0: सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए,
1: नानक विघ्न न लागे कोए,
0: पुष्ट मन में कर निरंकार,
1: कर मन मेरे सत व्यवहार,
0: निर्मल रसना अमृत पियो,
1: सदा सोहेला कर ले जियो,
0: नैनो पेखता कुर का रंग,
1: साध संग बिनसै सब संग,
0: चरण चलो मार गोबिंद,
1: मिटै पाप जपिए हरविंद,
0: कर हर कर्म श्रवण हर कथा,
1: हर दरगह नानक उजल मथा।

0: संग हर कीर्तन गाइए।
1: नानक बिगनते साधु राखे
0: हर गुण गाय अमृत रस चाखे।
1: संत दराया
0: सर्व सुख नानक ते पाया।
1: मृतक को जीवा लड़हार
0: भूखे को देवता दार।
1: सर्व नदान जापी दृष्टि माहे
0: पूर्व लिखे का लहना पाहे।
1: इसका करने जोग
0: इस बिन दूसर हुआ न होग।
1: जप जन सदा सदा दिन रहनी
0: सब ते ऊंच निर्मले करनी।
1: कर कृपा जिसको नाम दिया
0: नानक सोजन निर्मल थिया।
1: के मन गुर की प्रतीत
0: इस जन आवे हर प्रभ चीत।
1: भगत भगत सुनिए तैलोए
0: जाके हृदय एक होए।
1: करनी सचता की रहत
0: सच हृदय सतमुख कहत।

0: हरन परन जाका नेत्र होर,
1: किसका मंत्र न जाने होर,
0: आनंद रूप मंगल सद जाके,
1: सर्व थोक सुनी है करता कै,
0: राज महराज जोग मह जोगी,
1: ताप मह तपीश्वर कृष्ण मह पूर।

0: बनाई
1: अपनी कीमत आपे पाई
0: सब घट तिसके सब तिसके ठाओ
1: जप जप जीवे नानक हर नाओ
0: नाम के तारे सगले जंत
1: नाम के तारे खंड ब्रह्मांड
0: नाम के तारे सिमरत वेद प्राण
1: नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान
0: नाम के तारे आगास पाल
1: नाम के तारे सगल आकार
0: नाम के तारे प्रिया सब पवन
1: नाम के संग उदरे सुन श्रवण
0: कृपा जिस आपने नाम लाए
1: नानक चौथे पद में सूजन गत पाए
0: रूप सत जग सत स्थान
1: पुरख सत केवल प्रधान
0: करतूत सत सत जा की बाणी
1: सत पुरख सब महे समानी
0: सत कर्म जा की रचना सत
1: मूल सत सत उत्पत
0: सत गरणी निर्मल निर्मली
1: जिसे बुझाए तिसे सब फली
0: सत नाम प्रभु का सुखदाई
1: विश्वास सत नान गुर ते पाई
0: सत वचन साधु उपदेश
1: सत तेजन जा कर दे प्रवेश
0: सत नृत बुझे जे गोए
1: नाम जपता की गत हुए
0: आप सत किया सब सत
1: आपे जाने अपनी मित गत
0: जिसकी श्रेष्ठ सो करण हार
1: अवर न बूझ करत विचार।

0: देव को कृपालन हारा
1: सो
0: सेवक जिस दया प्रवता है
1: सो सेवक सास सास मारे
0: अपने जन का पर दाटा के
1: अपने सेवक की सर पर रख
0: अपने दास को देव डाई
1: अपने सेवक को नाम जपाई
0: अपने सेवक किया पत रख
1: कोई न लख
0: रब के सेवक को न पहुँचे
1: सेवक
0: प्रभु अपनी सेवा

0: सत पुरख पूरन विवेक अगम गोचर प्रभ निर्वाणी ताकी कीमत किने न पाई
1: भगत बंदन करे
0: चरण कमल हृदय सिमरह
1: अपने
0: नानक जिस पर साध है सा प्रभ जपने
1: रस पावे जन कोई
0: अमृत पीवे अमर सो होए।

0: मन वंचित नानक फल पाए।
1: संग न जालस्ते रतना
0: तू क्या लपटा वह मूर्ख मना।
1: सुत मीत कुटुंब अरवंता
0: इनते कहो तुम कवन सुनाता।
1: राज रंग माया विस्तार
0: इनते कहो कवन छुटकार।
1: अस हस्ती रथ सवारी
0: झूठा डंप झूठ पासारी।
1: जिन दिए तिस बुझन बगाना
0: नाम विसार नानक पछताना।
1: गुर की मत तू ले आने
0: भगत बिना बहु डूबे।
1: हर की भगत करो मन मीत
0: निर्मल हुए तुम्हारो चीत।
1: चरण कमल राखो मन माहे
0: जन्म जन्म के किल बिक जाहे।
1: आप जप हो अबरा नाम जपाव
0: सुनत कहत रहत गत पावो।
1: सार पूत सत हर को नाओ
0: सह सुबाय नान गुन गाओ।
1: गुन गाव तेरी उत्तर समैल
0: विंस जाए हो मैं बिक फैल।
1: ओहे अचिंत बसाय सुख नाल
0: सास ग्रासर नाम संभाल।
1: चाड़ सियान पसग मना
0: सात संग पावे सच तना।
1: हर कुंजी संच करो व्यवहार
0: यहाँ सुख दर गह जयकार।
1: सर्व निरंतर को देख
0: कहो नानक जाके मस्तक लेख।
1: एको जप एको सलाह है
0: एक सिमर एको मन आहे।
1: किसके गुण गाओ अनंत
0: मंतन जाप एक भगवंत।
1: एको एक एक हर वाप
0: पूरन पूर हो प्रव्याप।
1: अनक विसार एक देव है
0: एक आराध प्रा

0: तस प्रभु में ते आओ।
1: चरण कमल स्यों लागे प्रीत,
0: अर्ध करो राखी नित नीत।
1: एक होटि को आधार,
0: नानक मांगे नाम प्रसार।
1: प्रभु की दृष्ट महा सुख होए,
0: रस पावे बिरला कोए।
1: जिन चाख्या सीजन त्रिपताने,
0: पूरन पुरख नहीं जोलाने।
1: भर भरे प्रेम रस रंग,
0: जय चाओ साध कै संग।
1: परे शरणान सब त्याग,
0: अंतर प्रगास अंधन निर्मलाग।
1: बड़ भागी जपया प्रभु सोए,
0: नानक नाम रते सुख होए।
1: सेवक की मनसा पूरी पही,
0: सतगुरु ते निर्मल मत ले।
1: जन को प्रभु होयो दयालो,
0: सेवक की नो सदा निहाल।
1: बंधन काट मुक्त जन भया,
0: जन्म मरण दुख परम परम।

0: लाए मनी।
1: हम निर्गुण यार नीच अजान,
0: नानक तुमरी शरण पुरख भगवान।
1: सर्व वैकुंठ मुक्त मोख पाए,
0: निमक हर के गुण गाए।
1: अनिक राज भोग बडियाई,
0: नाम की कथा मन पाई।
1: बहु भोजन कापुर संगीत, भली सुकरणी शोभा धनवंत।
0: हृदय बसै पूरन ब्रह्मंत,
1: साध संग प्रभ देव निवास।
0: सर्व सुख
1: ना

0: तब हर्ष शोक का विषय व्यापक हो,
1: अपने आप पार ब्रह्म
0: तब मोह का शोक च परम,
1: अपन केला भतीजा
0: ज्ञान करने हार न
1: जब होवत प्रभु केवल तनी,
0: तब बंद मुक्त को किसको बनी,
1: जब एक अर्गम पार
0: तब नरक सुर को कौन होता,
1: जब निर्गुण प्रभु सहस वाए
0: तब शिव शक्त कहो कित ठाए,
1: जब आपे आप अपनी ज्योतरे
0: तब कवन निडर कवन
1: अपन चरित सब करने हार,
0: नानक ठाकुर अगम अपार
1: अविनाशी सुख अपने आसन,
0: जन्म मरण को कहा बिना सुन,
1: जब पूर्ण कर्ता प्रभु सोए
0: तब जम की त्रास कहो किस होए,
1: जब गुत गोचर पविका
0: तब चित्र गुत किस गोचर लिखा,
1: जब नाद नंजन गोचर गा दे
0: तब कौन छुट्टे कौन बंधन बाते,
1: अपना पापी चर जा
0: नानक अपन रूप आपी पर जा,
1: यह निर्मल पुरख पुरख पत होता
0: तह बिन मैल कहो क्या तोता, तै कौन को मान कौन अभिमान,
1: स्वरूप केवल जगदीश
0: तै चल छिद्र लगत को।

0: आपन सूत सब जगत परोए,
1: जाको प्रभ जीओ आप बुझाए,
0: सच नाम सो ही जन पाए,
1: सो समदर्शी तत का बेता,
0: नानक सगल सृष्ट का जेता,
1: जी जंत्र सबता कह हाथ,
0: दीन दयाल अनाथ को नाथ,
1: जिस रखे तिस कोई न मारे,
0: सो मुआ जिस मनो पिसारे,
1: तिस तज अवर कहा को जाए,
0: सब सिर एक निरंजन राय।

0: सब ऊपर होवत कृपाल,
1: अपने कर्तव्य जन आप,
0: अंतर जामी रहो व्याप,
1: तत्पाले जीवन बहुपात,
0: जो जो रसियो सो तिसै तिहात,
1: जिस भावे तिस लय मिलाए,
0: भगत करे हर के गुण गाए,
1: मन अंतर विश्वास कर मानिया,
0: करन हार नानक इक जानिया,
1: जन लागा हर एक कह नाए,
0: इसकी आस न बिरथी जाए,
1: सेवक को सेवा बनाए,
0: हुकम बूझ परम पद पाए,
1: इससे ऊपर नहीं विचार,
0: जाके मन बसिया निरंकार,
1: बंधन तोर पे निर्वैर,
0: आन दिन पूजह गुर के पैर,
1: यह लोक सुखिए परलोक सुहेले,
0: नानक हर प्रभु आप मिले,
1: साध संग मिल करो आनंद,
0: गुण गावो प्र परमानंद,
1: राम नाम दत करो विचार,
0: दुर्लभ देह का

0: कर गहन बह खेप तुम्हारी,
1: इसका टेक रखो मन माहे,
0: नानक बहुर नया बह जाए,
1: इससे दूर गह को जाए,
0: उबरै राखन हार त्याए,
1: कृपो जप सगल पो मिटे,
0: प्रभ कृपा ते प्राणी छुटे,
1: प्रभ राखे दिस नाही दुख,
0: नाम जपत मन होवत सुख,
1: चिंता जाए मिटे अहंकार,
0: इस जन को कोई न पहुंचन हार,
1: सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा,
0: नानक ताके नानक ताके कार्य पूरा,
1: मत पूरी अमृत जाके दृष्ट,
0: दर्शन पेखत उदरत सृष्ट,
1: चरण कमल जाके अनूप,
0: सफल दर्शन सुंदर हर रूप,
1: धन सेवा सेवक परवान,
0: अंतर जामी पुरख प्रधान।

0: संत पेटिया नानक मन बरगास्वस्ति
1: संत संग अंतर प्रवडिठा
0: प्रभु का लागा मीठा
1: सगल सुमकरी।

0: आल जंजाल बेकारते रहते।
1: राम नाम सुन रसना कहते,
0: कर प्रसाद दया प्रवतारी,
1: नानक निभि खेप हमारी।
0: प्रभु की उस्तत करहो संत मीत,
1: सावधान एकाग्र चीत,
0: सुख मनि सहज गोविंद गुण नाम,
1: जिस मन बसे सुहूत निदान,
0: सर्व इच्छा ताकी पूर्ण होए,
1: प्रधान पुरुष प्रगट सब लोए।

0: जो तद भाव है साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार
1: असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तप दाओ
0: असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह अदास
1: असंख भक्त गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार
0: असंख सूर मुख पख सार असंख मोड़ लिव लाए तार
1: कुदरत कवन गह विचार बारे न जावा एक बार
0: जो तद भाव है साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार
1: असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर हराम खोर
0: असंख अमर कर जाहे जोर असंख गलवट हत्या कमाहे
1: असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ यार कूड़े फराहे
0: असंख मलेश मल पख खाए असंख निंदक सिर कर है पार
1: नानक नीच गह विचार बारे न जावा एक बार
0: जो तद भाव है साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार
1: असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो
0: असंख है सिर पार होए अखरी नाम अखरी।

एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जाप श्री मुख वाक पातशाही दसवीं छपै छंद त्व प्रसाद चकर चिहन अर बरन जात अर पात नहन जेहे अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमित ओज कहि जय त्रि भवन महीप।

0: रूप है, अनूप है, अजू है, अपू है,
1: अलेख है, अपेक है, नाम है, अकाम है,
0: अधे है, अपे है, अजीत है, अपीत है,
1: तर्मान है, निदान है, तर्वर्ग है, असर्ग है,
0: अनिल है, अनाद है, अजय है, आजाद है,
1: अजन्म है, अवर्ण है, अभूत है, अवर्ण है,
0: अगंज है, अपंज है, अचूज है, अचंज है,
1: अबंध है, अबंध है,
0: निर्बूज है, असूज है, अकाल है, अजाल है,
1: अल्लाह है, अनंत है, अनंत है,
0: अलीक है, नृसरीक है, निर्लंब है, असंब है,
1: अजम है, अभूत है, अच्युत है,
0: अलोक है, अशोक है, अकर्म है, अपर्म है,
1: अजीत है, अपीत है, अबा है, अगा है,
0: अमान है, निदान है, अनि

0: सर्वत्र पाहो
1: के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है
0: सर्वत्र के सर्वत्र पाला
1: के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता
0: के सर्वत्र पेखी
1: के सर्वत्र काज है।

0: अजिमे जायक जगिमे।
1: अनेकुल तरंग हैं, अभेद हैं, अपंग हैं,
0: अजीम निवाज हैं, कलिमल खराज हैं,
1: निरुक्त स्वरूप हैं।

0: नमो परमतत्त्वं तत्त्वं स्वरूपे
1: नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने
0: नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने
1: नमो ज्योत ज्योते

0: जगत बनायो,
1: देव धन जग चन उपजायो,
0: आद अंत एक अवतारा,
1: सोई गुरु समझियो हमारा,
0: नमस्कार ते सही को हमारी,
1: सकल प्रजा जन आप सवारी,
0: जीवकन को सब गुण सुख दियो,
1: सतरंग को पल मोहबत कियो,
0: कट कट के अंतर की जानत,
1: भले बुरे की पीर पछानत,
0: ते कुंज रसूला,
1: सप कृपा दृष्ट कर फूला,
0: संतन दुख पाए ते दुखी,
1: सुख पाए साधन के सुखी,
0: एक एक की पीर पछाने,
1: कट कट के पट पट की जाने,
0: जब उद करक करा करता।

0: बुद्ध है जेती
1: तुमरा लखाना जाए पसारा
2: सजा प्रथम संसारा
0: एक रूप अनूप स्वरूपा।

0: हमारे
1: मूर्ख जवन पग परे तिहारे
0: तिनके तुम संकट सब तारे
1: जो कल को एक बार त्याए हैं
0: ताके काल निकन हैं
1: दिशा होए ताई सब काला
0: दुष्ट अरिष्ट करे तत्काला
1: कृपा दृष्ट तन जाहे नहर

0: जीविक सकल देह को हरता,
1: दुष्ट दोषियों को क्षय करता,
0: श्री तुझो पै दयाला,
1: पूर्ण करं ग्रंथ तत्काल,
0: मन बाशत पल पामे सोई,
1: दुख न तसय आपत कोई अड़िल,
0: सुने गंग जाय सरस न पावई,
1: सुने मूर्छित लाए चतुरता आवई,
0: दुख दर्द पौ नित न तिन नर के रहे,
1: हो जो जाकी एक बार चौपई को कह चौपई,
0: संभव सतर सैंस पनी।

0: जन मन निर्मल सदा रहे गुरु नाले।
1: जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवे, होवे ता सन्मुख सिख कोई, जियो रहे गुरु नाले।
0: गुर के चन हृदय त्याए अंतर।

सच्चा होए कूड़ की मल उतरै कंकरे हच्छा धोए सत्ता पर जानिए जा सच तरे प्यार नाओ सुनमन रहसिए ता पाए मोग द्वार सच्चा पर जानिए जा जुगत जाने जीओ सत का आया साध कै विच दे करता बियो

जिन पट अंदर बाहर गुजरते पले संसार, तिनने हो लगा रब से ती देखने विचार। रंग हसे रंग रोवे चुपती कर जाए, परवाह नाही किसे केरी बात सचे ना। दरबार ऊपर कट मंगा जब देता।

सोरठ महला पांजवां गुरपूरै चरनी लाया हर संग सहाई पाया जह जाइय तहां सोहेले कर कृपा प्रभ मेले। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

गाओ जी। हले भी जिन्नी संगत है उन्नी आवाज नहीं, भाई बोलिया करो, उंज सारा सारा दिन बोलते हैं, यही बोलिया परवान है।

0: महाराज मेर करन, मंगना ते हर रोज है, मंग मंग के किते जिंदगी ना बीत जाए, मंगदिया मंगदिया जिंदगी लंघ ना जाए, कहिंदे ने ओ भी मंग लेना जो अगे भी ना जाए। ईहां खाट चलो हर लाहा आगे बसन सुहेला। महाराज सबदा गाया सबदा सुनिया प्रवान कर लैन, बड़ी भावना ते प्यार नाल तुसी हाजरियां भरिया ने। ये उदर है जिथे बिन बोलिया सब किछ जा, इत्थे भावना नू भाग लगदे ने। जिवें घर विच बेअंत सेवावां सरदार जगमोहन सिंह जी वर्गे बेअंत ऐसियां रूहां लाहा लै रहियां ने, सदाई सेवा करके जीवन नू उच्चा ते सुच्चा बनाइए। आओ भाई साहब जी, भाई गुरु मेल सिंह जी हजूरी रागी श्री दरबार साहब आ गए ने। अगला प्रोग्राम बड़े प्यार नाल स्टेज तो सरवण करो जी, फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा,
1: वाहिगुरु जी की फतेह। कुरपुर है कृपा धारी, पूरी लोच हमारी, धन धन सा गुरु ग्रंथ साहिब जी पावन पुत्र इलाही दरबार दी हाजरी भर के इलाही मन दे कथा कीर्तन शरण करके बख्शा लै रही परम सत्कार जो सत्संग जीओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये सन भाई साहब ओंकार सिंह जी, उन्हें बारे तो उन्होंने कीर्तन जी सा जिन्होंने आप जी इलाही मन के कीर्तन शरण करवाए ने, उन्होंने हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। हूँ कुछ सूचनावान से नाल बेनती है भाई साहब भाई गुरमेल सिंह जी हजूर रागी श्री दरबार साहब श्री अमृतसर वाले कि वह तैयारी आरंभ देन, ते उन्हों दा समा होगा जी ठीक 12:30 तक। 12:30 ठीक आके साढ़े पास कॉलेज प्रैप वाले ने 2-3 मिनट की सूचना देनी है। नाल ही उस वेले श्री जपजी साहब जी के कीर्तन शुरू हो जाने, भाई साहब सतनाम सिंह जी ते उन्हां दे जथे ने करने। तो आप जी बेनती है विराजमान रहने की कृपा करनी, हाजरी भर के लहा लेना। थोड़िया सूचनावान दे लवान हूँ। एक तो सारा महीना जपजी साहब जी के पाठ चेते करने लई उन्हां दी कथा उन्हां दा कीर्तन हर ऐतवार, सो ये चेते रखिए। यह सारा कुछ किया जा रहा तन तन गुरु ग्रंथ साहब जी के पहले प्रकाश में जो 12 तरीक नूं आ रहा हैगा 12 सितंबर नूं, ते उस संबंध च ही 31 राग दरबार भी हो रहा 11, 12, 13 नूं। उस संबंध विच 27 तरीक नूं 27 सितंबर नूं हो रहा जी श्री सहज पाठ दे भोग सवेरे 10 बजे, ते उस तो बाद नगर कीर्तन, वह भी चेता रखो। मैं सारा कुछ हूँ इको थां ही करके दस रहा आप जी नाल सूचना मन। संगरांद आ रही 17 तरीक नूं जी सितंबर दी नूं, ते तंत्र गुरु अर्जन देव जी का गुरतक अधिदेव भी 13 सितंबर नूं हैगा। 14 नूं है ज्योति जोत धन धन गुरु रामदास साहब, ते बाकी सूचनावां हुण चर्चवां सारियां ही। आ हुण आपां कीर्तन नाल जुड़िए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।

0: मेरे विनवाद सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब जी पातशाह गरीब नवाज आप दे दरकर दे सेवक सरबत माई भाई गुरु की सत संगत पातशाह कीर्तन बहक बेअंत माया अरदास कराने ने गरीब नवाज जी सरबत दे कार्य रास करने दरकर दी टहल सिखी सिदक भरोसा नाम दियां दातां नाल निवाजना सरबत दे कार्य रास करने दासरियां नूं सबब बनिया थोड़े सारिया दे दर्शन दीदार होए सतगुरु की मेहरमत हुई सतगुरु की कृपा हुई थोड़े सारे में बैठ के गुरु का हर जस गाव्या सुनिया है सतगुरु कृपा करन ए गाव्या सुनिया कीर्तन थाए पै जाए दासरे समूह प्रबंधक कमेटी अते संगत दे बहुत बहुत धन्यवादी ने जिन्होंने बड़ा माण प्यार सत्कार दिता है अते नाल ही जेड़े जरिया बने सरबजोत सिंह जी सुबद्दी जिन्हां दी लड़की दे आनंद कारज लई दासरे इत्थे हाजिर होए सन सो उस समा कृपा नाल गुरु की कृपा नाल संपूर्ण होया अते गुरु दीआं खुशियां प्राप्त कीतियां फिर दुआरा गुरु की संगत दा अते प्रबंधक साहबाना दा बहुत बहुत धन्यवाद दासरे बड़े प्रसन्न होए ने इतना वड्डा प्रोजेक्ट चला रहे ने लंगरां दी सेवा चल रही है सो ए बहुत वड्डी हिम्मत सतगुरु ने कृपा कीती है फतेह जाओ वाहिगुरु जी का खालसा
1: वाहिगुरु जी की फतेह बोले सो निहाल श्री अकाल परम सत्कार जो सत्संग जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सन सत्कारयोग भाई साहब भाई गुरमेल सिंह जी हजूरी आ गई श्री दरबार साहब श्री अमृतसर जिन्ह ने आप जी राजभवन के कीर्तन सरवण करवाए ने शाम के कीर्तन का समा इन्हों का नोट कर लो साढ़े सात तो साढ़े अठ अज हैगा कल भी इन्हों का कीर्तन हैगा इस टाइम से कल इन्हों का आखिरी दिन होगा इस फेरी का सो उन्हों का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद समा मेरे कुछ कुछ इन्होंने वास्ते है नहीं जी अज शाम का नहीं जी फिर कल शाम का होएगा जी फिर हाँ जी कल शाम का हैगा साढ़े सात तो साढ़े अठ सो हूँ समय नोट मुख कर रखता हुआ मैं बेनती करा कल जी प्रैप वाले सरदार हरफतेह सिंह जी ने कि वह दो तीन मिनट वास्ते सूचना उस कल प्रैप दे उस ही फिर भाई साहब भाई सतनाम सिंह जी से उन्होंने जथा श्री जब साहब के कीर्तन आरंभ करे तो ज्यों ही इन्हों का समा पूरा समाप्त होगा ठीक साढ़े इन्हों एक बजे ताई एक दो मिनट अगे हो जाएंगे तो उस ही भाई साहब भाई लखविंदर सिंह जी आके कथा आरंभ करे लड़ीवार जब जी साहब जी की वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह
2: धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी विच बैठी समूह साध संगत जीओ फतेह का जवाब फतेह विच देना जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह दास का नाम हरफतेह सिंह है ते तो दो मिनट तो जो असी अज जानकारी सांझी करनी है कि सैनज गुरुद्वारा साहब की सहयोग नाल जो कॉलेज प्रैप प्रोग्राम की क्लासा शुरू हो रही हैं तो इन्हों करीब पांच साल हो चुके हैं क्लासा शुरू हुई तो असी मुख तौर उत्ते छेवीं तो लैके बारहवीं तक के बच्चों की जो स्टूडेंट सन मैथ साइंस इंग्लिश और कॉलेज काउंसलिंग मदद लई क्लासा चला रहे हैं ये सारा कुछ बड़ी अणथक सेवादार हैं जिन्हां दे सहयोग नाल जिन्हां दी लीडरशिप नाल इह गुरुद्वारा साहब दे सहयोग नाल सारा काम हो रहा है तो साडी बेनती है संगत नूं कि तुहाडे बच्चे अगर छेवीं तों लैके बारहवीं तक दे स्टूडेंट हैं जिन्हां नूं किसी भी तरीके नाल मैथ साइंस इंग्लिश या कॉलेज काउंसलिंग लई किसी भी तरह की मदद की लोड़ है तो असीं तुहाडे लई इत्थे हाजिर हाँ क्योंकि यह सारा जो प्रोग्राम है स्टूडेंट्स वालों लई शुरू किया गया है कम्यूनिटी वालों क्योंकि बाहर जाइए तो बड़ी महंगी क्लासा लेनिया पैंदियां हन जिन्हां नाल कॉलेज विच एडमिशन लई मदद मिलती है पर असीं इत्थे सारे ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜੋ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਸ ਵੇਲੇ 2 ਬੂਥ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਟਿਊਟਰ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਓਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੁਛ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਖੁਦ 10ਵੀਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੋ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ 15-16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਾਸ਼ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਲੰਟੀਅਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੈਥ, ਸਾਇੰਸ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਕਾਲਜ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ ਜੋ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਯਾਚਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।
3: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਸਭ ਜੁੜੀਏ ਜੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬੈਠ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ।

0: परम सन्मान जो गुरु प्यारी साध संगत जीओ, दास ने अज पहली बार श्री जपजी साहब जी का संगत रूपी कीर्तन किया है। आस है भुलां की खिमा कर दोगे, सो आप जी असीसा देना ताकि अगो तो बाणी शुद्ध उच्चारण हो सके। सो भुलां की खिमा बख्शते हुए फतेह की सांझ पाओ।
1: वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी फतेह। एक चकारा होर छड़िए जी,
2: बोले सो निहाल श्री अकाल।
1: सो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब भाई सतनाम सिंह जी से उन्होंने जज्जे का। समा नहीं है कि मैं आप ही नाल कोई सूचना साझी करा। असं तकरीबन 12 मिनट लेट हाँ, तो मैनू साइटेशन मिल गई है कि खालसा स्कूल लेट हो गया सी पिछली बार 2 मिनट। इस बारी मैं बेनती करा सत्कारयोग ज्ञानी लखविंदर सिंह जी नूं कि वह 2 मिनट सानू पहला दे देन, ताकि असी खालसा स्कूल नूं पूरे टाइम से दे दीए। तो जिहड़े सुख आसन की सेवा निभाउण वाले उन्हां नूं बेनती जल्दी कर लैण उह, ते बाकी का प्रोग्राम बिल्कुल 2 मिनट पहला देंगे, 2 तो अज आप, ताकि वह कंप्लेन ना कर सकन, साइटेशन ना मैनूं देण जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
0: 1:40 2 मिनट।